0: तेरे इश्क में चलकर ये मंजर है, चाहत की फजाओं में मदहोश है,
1: तेरे प्यार में मेरी राहत की,
0: तेरे इश्क में बहकर ये दिलवर है, तेरे इश्क में चलकर